0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhan ni xia zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जिप सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से जेजो लंका मास दे जिना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो मजो जो जिता मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मा ताते ले गेम गने जेजो लंका बि पेडो रे
0: रे रे तंगा ह गिंग के के शाम बत कि छि इन रो तिंग मोने ला संग रो रे
1: और रे रे रे
2: लंका
1: के तो तो आमे छाया
0: बस के छुना छि पिन जो को यो गोया बोदा
3: 火油了把做金不没有危机场面记住狼狗了马子有呢也不有这不能把错心中梦呢心忙起来电视做银了而最不忙起来擦穿做电影心出配人出心中梦起来你本呢能我心中更加该过档 真就写下写的就行丁克顿的龙泉习近平去苏信农比当中央去他国多听着等着西尼中国七九七十出神楼家立起大家吞不中当习近平可对着三比中国七九七十出神楼家公办洛用党了等年天府某忙前几度顶皮错啊专业食品人员安全写的前面影片大家 行中孟姐初二年日行马地板这里所若行月香港安村娘多行中孟姐初于娘娘村皮日行行多